0: छ। अर्गानिक दाउरा चुलो दरबार रिसोर्ट एन्ड होमस्टेमा पाल्नु भई सेवा गर्ने अवसर दिनुहोस्।
1: साथै यहाँ विवाह व्रतबन्ध पास्नी छेवर लगायत शुभ कार्यहरूमा सम्झन सक्नुहुनेछ।
0: सम्पर्क नम्बर 97-49-83-94, 98-40-29-96-31। प्रोपाइटर मेनुका कार्की, ग्लोबल एकीकृत कृषि माछा तथा पशुपन्छी फार्म एवं अर्गानिक दाउरा चुलो दरबार रिसोर्ट एन्ड होमस्टे, बलेफी 7-80 किलो लामो साङ्गु सिन्धुपाल्चो।
2: This is your radio. This is LMFM 89.6 MHz. 89.